0: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Vishal Trivedi, wahi jana pehchana naam, life insurance portfolio specialist. Ab Vishal se hi lijiye guaranteed cash value life insurance, mortgage insurance, critical illness insurance, income replacement insurance, super visa insurance, travel insurance, visitors to Canada insurance. Compare with Vishal and get the best possible discounts on visitors and super visa insurance. Call Vishal Trivedi at 647-767-9852. That's 647-767-9852. Vishal Trivedi.
2: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ, या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200. It's 416-206-3200.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। PC लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन कॉल 9055147877। वही जायका, वही लजत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
5: जी हाँ, चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है। अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं तो एक बार आप यहाँ जरूर तशरीफ ले जाइए। वीकेंड पे चले जाइएगा, स्पेशल डीज इन्होंने लगाई हुई हैं और 100% आपको हलाल फ्रेश अथेंटिक फूड आपको मिलेगा। इकबाल शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल में सुनेंगे। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम।
6: जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑनर लेने का। आपको और आपके सारे सामान को बहुत बहुत बकरीद मुबारक।
5: बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी ईद मुबारक। और ईद पे बड़ी स्पेशल, हमने सुना है कि आपने ऑफर्स भी लगाई हुई हैं और वैसे ही अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन शायद है ही नहीं, रिजवे प्लाजा में तो शायद यही वाहिद है और लोग तारीफ भी बड़ी करते हैं। कुछ बताएंगे चायखाना के हवाले से और स्पेशल ईद की डील्स के हवाले से?
6: जी बिल्कुल, ईद पर हमने फ्लैट हर चीज पर, हम पाकिस्तानी कुछ थोड़ी बहुत हमारे पास पाकिस्तानी कुजीन भी है, लेकिन मेनली हमारे पास पाकिस्तानी चाइनीज है। सब पर फ्लैट हमने 15% ऑफ लगाया हुआ है, डाइनिंग और टेकआउट दोनों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हमारे पास ईद के पहले दिन भी आए थे और आपके प्रोग्राम सुन के तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश गए और बहुत अच्छे उन्होंने रिव्यूज भी दिए, सब लोग चेक भी कर सकते हैं, और बहुत खुश गए, उनको खाना बहुत पसंद आया। और सबकी जुबान पर यही था कि हमें वही पाकिस्तानी जायका, वही जो हम इस कर रहे थे, हमें वही यहाँ पर पहली बार मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शेफ हमारा वहीं से आए हैं।
5: सही,
6: तो आपको वही जायका मिलेगा इंशाल्लाह।
5: अच्छा, आपके PC के सुना शेफ हैं, 14 साल वहां उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको वही जायका और वही टेस्ट मिलता है। आपको मसाले वगैरह क्या आप खुद तैयार करते हैं, कैसे होता है?
6: भट्टी साहब, हम ना सिर्फ मसाले हमारे अपने हैं, हम कोई MSG इस्तेमाल नहीं करते, कोई हमारा पॉकेट डब्बे का मसाला नहीं है, हमारी सॉसेस भी जो इसकी अपनी सॉसेस होती है, हम सॉस भी खुद ही तैयार करते हैं।
5: okay.
6: फ्रेश चिलीज लेकर, फ्रेश चीजें लेकर, सारी सॉस हम खुद अपने स्टोर्स पर तैयार करते हैं वहीं पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है,
5: सही,
6: क्योंकि उनको सबको सिखाया जाता है PC में सॉस बनाना और सारी कटिंग्स बिल्कुल डिफरेंटली आपको मिलेगी इंशाल्लाह।
5: वेरी राइट। और जनाब, रिजवे प्लाजा में यूनिट इनका 30 है, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना चाइनीज कुजीन, अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन। अच्छा, अब वहाँ आजकल थोड़ा बहुत ये होता है कि अच्छा रेस्टोरेंट बना हो, एम्बियंस अच्छा हो, तो प्राइसेस बड़ी थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, आपकी प्राइसेस बारे की क्या सूरत हाल?
6: जी प्राइसेस हमने, क्योंकि हम नए हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, तो सारी चीजें हमारी अंडर $20 हैं। और एक कोई भी आप डिश, कोई भी आप एक डिश लेंगे इंशाल्लाह वो आराम से दो लोग खा सकते हैं, तो क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी बहुत अच्छी प्राइस पर है।
5: जबरदस्त हो गया जनाब, आप जरूर तशरीफ ले जाइए, वीकेंड है और वीकेंड पे आप पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने तो एक बार चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन तशरीफ ले जाइए। नंबर भी आप नोट कर लें आप बुकिंग के लिए, 9055147877, 9055147877, 3920 ग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा में सागर में। शाहब, कुछ और ऐड करना चाहें, कुछ डिटेल बताना चाहें?
6: बहुत बहुत शुक्रिया, बस ईद का दिन है, आप कल वीकेंड है, आप जरूर आए और एक बार जरूर ट्राई करें और फिर हमें बताएं कि अगर कोई کمی ہے تو ہم اس کو اور بھی بہتر کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا.
5: چلیں بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو, بہت شکریہ.
6: بہت شکریہ آپ کا.
5: سعید اقبال شاہ سے ہمارے ساتھ تھے, چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے جو کہ ریجوے پلازا میں 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30, اور سبھی لوگ جو جاتے ہیں مختلف کھانے ٹرائی کرتے ہیں. اگر آپ نے چائنیز پاکستانی چائنیز کھانے نہیں کھائے تو ایک دفعہ ریجوے پلازا جائیں تو آپ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین میں ضرور تشریف لے جائیے گا. 416-593-0003. دنیا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی پرابلم کا شکار رہتی ہے. کبھی کوئی وبا آ جاتی ہے, کبھی زلزلے آ جاتے ہیں, کبھی کچھ معاملات ہیں. اب افریقی ممالک کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا وائرس جو ہے وہ خطرناک حد تک پھیل رہا ہے, تو دنیا بھر میں سفری پابندیاں اب سخت کر دی گئی ہیں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کانگو میں ایبولا وائرس کے اب تک 900 مشتبہ کیسز سامنے آئے ہیں, 220 سے زیادہ اموات بھی ہو چکی ہیں. یوگینڈا میں 5 اور ایک ہلاکت کی تصدیق ہے. کانگو حکومت نے وائرس پر قابو پانے کے لیے مشرق علاقے بونیا جانے اور وہاں سے آنے والی تمام پروازیں معطل کر دی ہیں. صرف طبی انسانی امداد اور ہنگامی پروازوں کو خصوصی اجازت دی گئی ہے. امریکہ نے کانگو, یوگینڈا اور جنوبی سوڈان سے آنے والے غیر ملکی مسافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے, اور ان آج ممالک سے آنے والے افراد کے لیے 21 دن کی نگرانی اور قرنطینہ جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے. برطانیہ, جرمنی, فرانس سمیت کئی یورپی ممالک نے ہوائی اڈوں پر سخت اسکریننگ شروع کر دی ہے. متاثر علاقوں کے لیے غیر ضروری سفر سے خبردار کیا گیا ہے. یو اے ای, سعودی عرب نے بھی متاثر علاقوں سے آنے والے مسافروں کے لیے صحت سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دی ہے, جبکہ بعض صورتوں میں عارضی سفری پابندیاں بھی نافذ کر دی گئی ہیں. کینیڈا نے بھی متاثر ممالک سے آنے والوں کے لیے 21 دن کا قرنطینہ لازمی قرار دیا ہے, جبکہ سنگاپور اور جاپان میں بھی سخت نگرانی اور طبی چیکنگ جاری ہے. طبی ماہرین کے مطابق ایبولا کی نایاب بندی بگیو جو ہے قسم تیزی سے پھیل رہی ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے, ہم یہ دعا کرتے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. اگر آپ کے ونڈوز اور ڈورز لیک ہو رہے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں تو جناب یہ وقت ہے آپ رابطہ کر لیجیے رائٹ ونڈو فورس, اور آپ کچھ ڈاؤن پیمنٹ دے دیجیے, باقی ایک سال بعد دے دیجیے. سم کنڈیشن میں اپلائی. آپ کال کر لیجیے, اسپیشل ڈیل ہے ان کی. 416-206-3200 416-206-3200.